0: দুঃখে কে টাও কু দুখনি কে পেট দুখনি যে দুখে আও দুখে আও জানি এই বেলা পখালা লাগে হইরান হইন কাজ জানি হলা কে করি কে নগর্নি কইলেই বিরামী ভার কেই মেলো মিশে পাইনি
1: বুয়া ফির নগর্নোস ঘটতেই সুভাষ মেডিকো ফার্মামা গই আলম এই বেশি সরকো সেরা চোখ দেখি কারাকার জানে বাদ সানি তেই যাম বরু
0: হুঞ্ছ বুয়ারি লো গই আলম সারে গারো
1: সুভাষ মেডিকো ফার্মা বেশি শহর নগরপালিকা আট সেরা
2: ইহা অনুভবী স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষণ গর্নুকা সাথেই উচিত পরামর্শ দিইন্ছ সবই খালে ঔষধিমা বিশেষ ছুটকো ব্যবস্থা ছ প্রোপাইটর সুভাষ দনাই সম্পর্ক মোবাইল নম্বর 9845664093
3: অর্জুন यार মিঠো অর্গানিক কফি কা পাইন্ছ নি বেশি শহরক মনাঙ্গে চৌতারামা রহেক নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড বক্স বিশ্রমা ইহা লমজুঙ্ক অর্গানিক কফি অরু প্রকার কফি পাইছ কফি মাত্রে কি খানা খাজা পনি থকালি খানা খাজা সেট রমাইল ফুল হাউস সমেত সাথী ভাই ভেটঘাট কাজ একদম উপযুক্ত ঠাঁ
4: নমস্তে থকালি কিচেন এন্ড পপ বিশ্রমা লমজুঙ্ক অর্গানিক কফি বিভিন্ন প্রকার কফি থকালি খানা খাজা সেট পাইছ साथै फुल हाउस पनि सञ्चालनमा रहेको छ
5: प्रोपाइटर टेकचङ गुरु नमस्ते थकाली किचन एन्ड बक्स बिस्ट्रो बेसी सहर नगरपालिका साथ मनाङे चौतारा सम्पर्क फोन नम्बर 066-520-903 मोबाइल नम्बर 9841680025
6: के तपाईँ भरपर्दो आयुर्वेद सेवाको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने चितवनको नमुना आयुर्वेद औषधालय तपाईँहरूकै सेवामा समर्पित छ यहाँ उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक औषधिहरू उपलब्ध हुनुका साथै अन्य प्रविधिबाट ठिक नभएका नयाँ तथा पुराना रोगहरू बाथ दम ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर धातु किनास जन्डिस पाल्स पत्थरी फिस्टुला प्यारालाइसिस मधुमेह जाँडरक्सी छुटाउने औषधि मोटोपन घटाउने बढाउने ब्लड प्रेसर यौन रोग छातीको दाग आदिको सफल उपचार गरिन्छ दैनिक दक्ष तथा अनुभवी विशेष ज्ञहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ थप जानकारीका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841-39-6-47 र 9811-90-610 नमुना आयुर्वेद औषधालय राप्ती नगरपालिका 5 भण्डारा स्कुल रोड चितवन र भरतपुर महानगरपालिका 12 मालपोत कस्तुरी टोल चितवन
7: उलाई फर्किने गरी तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टरमा पुरै रात हालेछन् बुढाले देखाउनलाई होला नि टोलै थर्किने गरी हाँसेका हुन त हाम्रो बाले नि तालबाराहीमै राख्नु भयो के अरे दाँत अहिलेसम्म भोलियै छन् लोकल कुखुराको हड्डी त चपाउँछन् बुढाले
1: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्रालीमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त दन्त सर्जन डाक्टर अरुण कुमार शाहद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरू दाँत सफा गर्ने टल्काउने र सामान्य शल्यक्रिया बच्चा तथा वृद्ध वृद्धाको दाँतको विशेष उपचार भर्ती हुनेहरूका लागि दाँत कलरको सिसा रेजिन कम्पोजिट भर्ने नदुखाइकन दाँत निकाल्ने दाँतको एक्सरे गर्ने नमिलेका बाङ्गाटिङ्गा दाँत सिधा गरी मिलाउने दाँतमा सिसा सिमेन्ट र चाँदी भर्ने फिक्स दाँत राख्ने साथै दाँत झिक्ने राख्ने र बनाउने मुख गनाउने दाँतको हर्ष गिजाबाट रगत आउने सुन्निने पिप आउने रोगको विशेष उपचार गरिन्छ
7: तालबाराही डेन्टल केयर सेन्टर प्राली बेसी सहर नगरपालिका साथ भीमसेन स्थान लमजुङ प्रोपाइटर ज्ञानु केसी सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841-32004 र 9811-20981
8: कान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज